Essential. LG ले ले आयो नया LG Essential Series. अब किफायती मूल्य में refrigerator, washing machine, AC को complete range. 10 वर्ष को warranty सहित 0% no cost EMI. नागरिकता भए पुग्छ. हर एक घर को खुशी घर घर में LG. LG, life's good.

डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो गाना चला तो गाना चला तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो गाना चला तो गाना चला तो।

तू घूर के देखे जो कोई तुझको कान पे उसके चार लगा दू जी भर के नाच लेबी शैंपेन के शावर में यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो

0: मिर्जा वाले बाबू मेरा गाना चला तो वाले बाबू मेरा गाना चला तो वाले बाबू मेरा गाना चला तो गाना चला तो गाना चला तो
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं बजा दूं आजा बेबी आजा बजा दूं आजा बेबी आजा बजा दूं गाना बजा दूं।

देख के तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चकली चमेल कटक डरीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने ये तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।